0: seed can garden hand tools, especially trowels. They're assembling a hand tool library in a truck which can be taken to events. If you have spare garden hand tools in good condition, please drop them into the E&M office, 145 Cuba Street, Palmerston North.
1: Community notices are a free service that anyone can use. Fill out the online form at mpr.nz or call 06 357 9340.
2: The next 10 years might end up the most consequential in New Zealand's history and the world's. Wealth inequality ballooning, wars starting and ending, climate change accelerating, and government captured by those over the money and power. At 1 of 200, we cover New Zealand and global events and politics by putting working people front and centre and speaking to independent experts here and overseas who you won't hear on established media. Let us help you make sense of it all. Monday nights at 11 on NPR, or at 1of200.nz.
1: Tune in weeknights at 8pm for The Showcase, a chance for NPR to highlight popular episodes, significant milestones, and interesting snippets of station history. That's 8pm weeknights. Check Facebook or Twitter for episode details.
3: Contemporary, mad, and colourful.
4: In the studio from the BBC, pulling back the curtain on artistic expression.
5: We tried to keep it top secret. That didn't work.
4: We explore the creative process with the artists themselves.
6: I wanted to try to see what the emotional resonance of movement was.
4: In the studio from the BBC.
1: The BBC World Service. Midnight till 8am every day on NPR.
7: नमस्कार, किया उरा पामस्टन नॉर्थ. मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंकिता शर्मा और आप सुन रहे हैं एमपीआर पर सबसे जबरदस्त और आपका अपना द इंडियन शो. और दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी चीज के बारे में जो हफ्ते में कम से कम 7 या 8 बार हमारे दिमाग में आती ही आती है, जिसे हम कहते हैं वाई मी, यानी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. याद है जब सुबह सुबह हम लोग 5 बजे उठकर जॉब के लिए लेट हो रहे होते हैं और अचानक से बोलते हैं कि मम्मी हमारे लिए चाय जल्दी बना देना, और तब हमें याद आता है कि माँ तो हम इंडिया में ही छोड़ आए हैं, यहाँ तो सिर्फ है हमारी तन्हाई. तो जल्दी जल्दी तैयार होकर हमें चाय बनानी पड़ती है, अपने लिए नाश्ता तैयार करना पड़ता है, और इन सभी कशमाकश में एक चीज जो हमारे दिमाग में आती है और हमारे दिल से निकलता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने ऐसे क्या कर्म करे थे. वेल, दोस्तों, आज इसी क्यों पर, वाई मी पर पोस्टमार्टम करेंगे, और बने रहिए हमारे साथ. तब तक सुनिए एक ऐसा गाना जो कि मेरे दिल के वाकई में बहुत करीब है.

माँ फिर कल हूँ या ना हूँ। बचपन से ही हमें एक चीज तो सिखाई गई है, जब भी एग्जाम होता था और हमारा दिल नहीं करता था वो एग्जाम करने का, तो मम्मी बोलती थी कि बेटा वो एग्जाम जल्दी से पास कर लो, फिर तो मजे ही मजे। बोर्ड का एग्जाम दिया तब भी हमें यही किया बोला गया कि ये कर लो, फिर तो मजे ही मजे। उसके बाद आई ट्वेल्थ, फिर आई ग्रेजुएशन और डिग्री, और हमें इसी दौड़ में हम भागते रहे कि बस ये कर लो, उसके बाद तो मज़े ही मज़े। दोस्तों, मज़े वाली कोई चीज़ वो होती है जब आप उस समय को, उस टाइम को जीते हैं, और वही एक NRI की लाइफ है। हम लोग मज़े के लिए हम भागते रहते हैं, पर मज़ा वो है जो हम प्रेजेंटली जिस समय को हम जी रहे हैं। याद कीजिए जब हम वीज़ा का फाइल कर रहे थे या फिर हम PTE दे रहे थे, तब भी हमें ये कहा गया था कि एक बार वहाँ पहुँच जाओगे तो मज़े ही मज़े। लेकिन असली मज़ा किस में है? उस समय को जीने में है, उन चुनौतियों के साथ जीने में है जिससे आपको एक नया स्किल मिलता है। मैं कहती हूँ कि NRI होना एक आर्ट ही है, क्योंकि इंडिया में जब भी थे हम, तो हम यही फील करते थे कि वहाँ जाएंगे, वहाँ की अच्छी लाइफ होगी। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो चीज़ें बदल जी जाती है। चुनौतियों का सामना हम सभी को जीवन में करना पड़ता है, भले ही हम भारत में हो या हम न्यूजीलैंड में हो। हर चीज़ बड़ी ही डिफरेंट होती है। अब जैसे कल की ही बात लीजिए, मैं पामर्स्टन नॉर्थ की जो बारिशें हैं उसको एंजॉय कर रही थी, और सडनली मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि अरे आज तो थर्सडे है और आज तो मुझे कूड़े का डब्बा बाहर रखना होता है। तो मैंने बिन उठाया और अपने दिन की शुरुआत करी। बिन उठा के दिन की शुरुआत इस तरीके से करी कि मैं उसे घसीटते हुए ले गई और बाहर रखा। पर आपको पता है कि मेरा अटायर कैसा था? मैंने नीचे

पजामा डाल रखा था और ऊपर रेनकोट. ये है एनआरआई की जिंदगी कि हर चीज को हमें खुद करना होता है. अभी कुछ टाइम पहले मेरे कोई नोन थे, उन्होंने बताया कि प्लम्बर जो है इतने पैसे मांग रहा है. तो उन्होंने प्लम्बर के लिए क्या किया, उन्होंने अपने जो एकेडमी है, जो फ्री एकेडमी है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमें फ्री में मिल जाती हैं, यानी हमारा प्यारा यूट्यूब, उसमें से देखा कि जो नल है उसको चेंज कैसे करें और उसे वो खुद ही चेंज करने लग गए. यही है खूबसूरती एनआरआई की कि जब कोई चुनौती आती है तभी हम एक नया स्किल लेकर आगे बढ़ते हैं. तो जब भी अगर सोचें कि यार क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो याद रखिए कि जब भी कोई भी आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाद आपको एक नया स्किल मिलेगा और वही स्किल आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाएगा. तभी तो खुशी खुशी बोल देते हैं कि अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैंने ये किया ही हुआ है. और वो कैसे, वो मज़े तभी आप लुटा सकते हैं जब आप अपनी चुनौतियों में अपना रास्ता खुद बनाए. दिस इज अ लाइफ ऑफ बीइंग एनआरआई.

बातें कुछ अनकही सी होने लगी और बातें कुछ अनकही सी कुछ ऐसी भी होती हैं जब हम न्यूजीलैंड में होते हैं और इंडिया से हमारे दोस्तों के हमारे रिश्तेदारों की बातें जो हम सुनकर हैरान हो जाते हैं. बहुत अजीब अजीब सी बातें आपको सुनने मिलती हैं. एक तो बात वही कि यार मज़े हैं तेरे, न्यूजीलैंड में रह रहा है, साफ जगह पे रह रहा है और डॉलर कमा रहा है. बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल ही सही बात है. लेकिन सेकंड चीज़ जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि यार क्या बोल रहा है. कहते हैं कि न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो तुम लोग तो सबके सब गोरे हो गए होगे. भाई इनको अब कौन समझाए कि यहाँ धूप इतनी तेज है कि गोरे होने की बजाय हम लोग तंदूरी चिकन बन जाते हैं. जी हाँ दोस्तों, यहाँ ओजोन लेयर जो है वो इतनी ज़्यादा कम है कि जिसकी वजह से जो धूप है हमें बहुत ज़्यादा तीखी लगती है. और मैं कहूँगी कि 15 या 20 मिनट में अगर आप धूप में रहें तो आपको वो स्कार्स, वो जो निशान होते हैं टैनिंग के, वो आपको नॉर्मली दिख जाते हैं. हाँ मैं मानती हूँ न्यूजीलैंड बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके हमें सोचना पड़ता है बाहर निकलने से पहले, सनस्क्रीन लगानी पड़ती है. तो मेरे उन सभी दोस्तों के लिए, मेरे उन सभी रिश्तेदारों के लिए जो मुझे कहते हैं कि न्यूजीलैंड जाके तो तू गोरी हो गई होगी, उसके लिए यही संदेश कि गोरी तो नहीं लेकिन हाँ चिकन तंदूरी वाली फील कभी कभी आती है जब हम शीशे में खुद को देखते हैं. और दूसरी बात ये कि बेटा कब सेटल होगे, अब तो लाइफ में तुम्हारे मज़े ही होंगे. हम सेटल होना हो बट अगर आप रह रहे हैं यहाँ तो सबसे पहले जो आपको सेटल करना पड़ता है वो होती है यहाँ की घास. जी हाँ दोस्तों, जब हम एक घर में रहते हैं हमारे आसपास एक पूरा एक एरिया होता है जहाँ पे घास होती है और उस घास को 15 से 20 दिन में मोविंग करना पड़ता है, जिसके लिए या तो आप खुद करें या फिर आप बाहर पैसे दें. तो अपने सेटलमेंट का पता ही नहीं है क्योंकि हमें पहले घास जो है उसको सेटल करना पड़ता है. यही है खूबसूरती NRI बनने की कि आपको अपने छोटे छोटे काम जो है वो खुद करने पड़ते हैं, लेकिन उन छोटे छोटे कामों में जो हुनर जो आपके हाथों में आता है वो काबिले तारीफ है. आपको सेल्फ मेड इंसान अगर बनाता है तो आपको NRI ज़रूर बनना चाहिए. इतना आप अपने घर से, अपनी भारत में रहकर वहाँ से नहीं सीखते जितना आप बाहर आके सीखते हैं. क्योंकि सही मायने में अभी तक मैं अपना अगर एक्सपीरियंस देखूँ तो यहाँ का कल्चर इतना डिफरेंट है और डिफरेंट कल्चर में सब जो है यूनाइट होकर साथ रहते हैं, यही खूबसूरती है. कोई रेसिज्म नहीं है, बहुत प्यार से सब एक दूसरे से मिलते हैं और सभी लोगों को पता है कि भारत में लोग दिवाली बनाते हैं, भारत में लोग होली बनाते हैं. मैं बात कर रही हूँ पामिस्टन नॉर्थ से, तो हम पामी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्क्वायर पे इस तरीके के इवेंट्स हमेशा होते रहते हैं जिसमें हम अपने भारतीय होने के बावजूद भी और भी जो हमारे दोस्त हैं जो दूसरे कल्चर से हैं वो यहाँ आकर हमारे साथ हमारे त्योहारों को मनाते हैं. ये खूबसूरती है और यही प्यार है जो हम यहाँ आकर लेते हैं. तो कभी भी अगर ये सोचे कि वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो याद रखिएगा कि ये जो वाई मी है इसने बहुत सारी ऐसी खूबसूरत यादें, खूबसूरत दोस्त आपको दिए हैं जो भारत में रहकर आपको शायद नहीं मिलते. तो चलिए दोस्तों, अब तो हुई हमारे रोने धोने की बात कि हमें यहाँ पे ग्रास काटनी पड़ती है, हमें यहाँ पे बर्तन मांजने पड़ते हैं, अपने कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, कोई भी आप मेड रखने के हिसाब से नहीं कर सकते काम, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सपेंसिव होती हैं. और उन्हीं सब चीज़ों की कश्माकश में आप जब घुसते हैं तो आप बोलते हैं वाई मी, मैं ही क्यों. तो अब वाई मी को ट्राई मी में बदलने का सुनहरा अवसर आ चुका है. आज हम अभी छोटी छोटी उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिससे आप वाई मी को ट्राई मी में कैसे बदल सकते हैं. दोस्तों जब बारिश में यहाँ पे हवा बहुत तेज चलती है और आप छाता लेकर जाते हैं, छाता लेकर आप गए, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, मैं छाता लेकर गई तो सामने एक